प्रजापते विधिकराप्चित कूर्मराज भंडारतो नृहरितीर्थ मुनींद्र लब्ध आनंदतीर्थ मुनिवंश यतीन्द्र पूज्य श्रीमूल राम भवता।

सहृत् प्रियतमामित शुद्ध बुद्धि श्रीमध्वराज भवतात्तव सुप्रभातम् ब्रह्माज्ञयादिति कुले बहुदोष पूर्णी जातोपि भक्ति भरितो भुवनम् समस्तम् योपी पवोदि विशदाम्बर शङ्कुकर्ण श्रीराघवेन्द्र भवतात्

राघवेन्द्रभवतात्तव सुप्रभातम् एते नृपाधन चयम् बहुवाहनस्त मानीय दर्शन कृते बहिरावसन्ति तान् पावयाज्य कृपया निरपेक्ष योगिन् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् एषा समस्त जनता पररात्रकाले सीताद्दितापि दधती वसनम् जलार्द्रम् त्वाम् सेवतेऽथ परिपूरय तत्तदिष्टम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीमूल राम जय दिग्विजयाच्छ रामान् वैकुण्ठवासमध पूजयितुम् समेहि सर्वेऽप्यमी विधिकरा विहितात्मकृत्याः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् धन्या इमे तव गुणस्तव नैरसङ्ख्यैः कण्ठोद्गतैर्दश दिशामशुभम् हरन्ति शृण्वन्ति देवसु जनान तकन्धरेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्ध पाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्ध पाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् शास्त्रेषु पूर्णधिषणा अपि पण्डितास्ते द्वार्या सते स्म बहु संशययापनाय उत्तिष्ठ छिन्धि हृदयस्थित संशयांस्तान् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मन्त्रालये सुरुचिरे वरतुङ्गभद्रातीरङ्गते सकलदैवत सन्निधानि वृन्दावने निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्र

तथा समग्र गुण लक्षणो भेदानां असंशयानां प्रसाद मात्रेण स्वभक्ता वेद संशय क्षेत्रोणां प्रणवाद्यशेष वैष्णव मंत्रोद्धारकाणां सर्वदा सर्व वैष्णव मंत्र जापकानां संसिद्ध सप्तकोटि महामंत्राणां भगवती भक्त्यतिशयेन भगवदुपासनार्थं स्वेच्छया गृहीत रूपाणां तत्र तत्र पृथक् पृथक् भगवतोऽनन्त रूपेषु पृथक् पृथक् वेदोक्त तदनुक्त भारतोक्त तदनुक्त संप्रदायागत स्वेतरस्वाभिन्नतया विशेष शक्ति विशेषाभ्याम् पृथक् व्यवहार विषय सर्वसामर्थ्योपेत निरवधिकानन्दानवद्य कल्याण गुण परिपूर्णानन्द गुणोपसंहर्तॄणाम् तथा वेदोक्त सर्वक्रियोपसंहर्तॄणाम् एवम् अनन्तरूपावयव गुणक्रिया जास्तवस्था विशिष्ट भगवदुपासकानाम् परमदयालूनाम् क्षमासमुद्राणाम् भक्तवत्सलानाम् भक्तापराधसहिष्णूनाम् स्वभक्तान् दुर्मार्गादुद्धृत्य सन्मार्गस्थापकानाम् स्वभक्तम् माम् उद्दिश्य भगवतः पुरः परमदयालो क्षमासमुद्रा भक्तवत्सला भक्त

प्रदाम सर्व शब्द वाच्याम सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्ताम सर्व गुणादि परिपूर्णतमाम सर्व देशादि दूरा सर्वाचिंत्याम सर्वोत्तमाम सर्वेश्वरा सर्वात्यंत विलक्षण स्वगत वेद विवर्जितत्वादिना भगवद्द्रष्टूणाम अभिमानादि सर्वदेश दूराणाम असूयेर्ष्याद्य शेष मनोदेश निवर्तकानाम नित्यापरोक्षीकृत रमायुक्ताशेषवद्रूपाणाम अतएव विलीनाशेष प्रकृतिबन्धानाम अतएव दूरोत्सारितादेश निष्ठानाम अतएवाशेषभक्ताशेष निष्ठ निवर्तकानाम प्रणवोपासकानाम अस्मदादिगुरूणाम श्रीमदानन्दतीर्थश्रीमच्चरणानाम् अन्तर्यामिनी अनिरुद्ध प्रद्युम्न सङ्ग्रहण वासुदेवात्मक श्रीमध्ववल्लभ श्रीलक्ष्मी वेदव्यासात्मक अण्डस्थितानन्दरूपावयव गुणक्रियाजात्यवस्थाविशिष्ट रमायुक्त क्षीराद्विशेषदायी श्रीपद्मनाभात्मक अण्डाद्बहिः अभिव्यक्त शुद्ध सृष्टित्वेनाभिमत श्री चतुर्मुख मुख्य प्राणोपास्यत्वाद्यनेक प्रयोजनकानन्दानन्द रूप मूलभूत तथा अशेष जगत्पालन प्रयोजनक शान्तिपत्ति निरुद्ध मूलभूत अशेष जगत्सृष्टि प्रयोजनक कृतिपति प्रद्युम्न मूलभूत जगत्संहार प्रयोजनक जयापति संकर्षण मूलभूत तथा स्वस्वासमग्रयोग्यताभिज्ञ परमानुग्रहशील भगवत्प्रेरित चतुर्मुखादि सद्गुरोपदिष्ट स्वस्वायोग्य भगवद्रूप गुणोपासनया सञ्जात स्वस्वायोग्य भगवद्रूप विशेष दर्शन भोगाभ्याम विनिष्टानिष्टसञ्जित प्रारब्ध लक्षणाशेष कर्मणाम् स्वस्वायोग्यतानुसारेण सम्पूर्ण साधनानाम् पूर्वकल्पे ब्रह्मणा सह विरजानदी स्नानेन त्यक्तलिङ्गानाम् तथा विनिष्टावशिष्टेष्टावेद प्रारब्धकर्मणाम् प्रलयकाले भगवदुदरेव सदाम् आनन्दमात्रवपुषाम् तदनुभवरहितानाम् स्वस्वायोग्य भगवद्रूपविशेषध्यानरतानाम् सृष्टिकाले भगवदाज्ञया भगवद्द्राग्बहिर्निर्गतानाम् श्रीश्वेतद्वीपदर्शनम् निमित्तीकृत्य प्रदानावरणभूत स्वेच्छाप्रसरणेन स्वस्वायोग्यानन्दाविर्भावलक्षण मुक्तिप्रदानप्रयोजनकमायापति श्री वासुदेवात्मक लक्ष्म्यात्मक प्रलयाभ्यस्त श्रीवटपत्रशेषदायशेष जगदुदराशेषमुक्तनाभिदेशोर्ध्वभाग कुक्षाख्यदेश त्रिविधाशेष संसारिनाभिदेशाखिल तमत्पतितनाभ्यदो भागदेश श्रीभूम्यालिङ्गित कालादिज्येष्ठकपरमाण्माद्यशेष कालावयवसृष्ट्यादिकर्तृशेषनामक परमपुरुषनामक श्रीचतुर्मुखमुख्यप्राणोपासित चरणानिरुद्धादिचतुरूपात्मक गायत्रीनामक सविदुर्नामकरूपविशेषात्मक व्याप्तरूपबृहत्शरीर शून्याविधकालाविध केवलाविध ब्रह्माविधानन्दाविध रूपविशेषात्मक निरूपचरितमूलरूप निरूपचरित व्याप्ताप्रतिबद्ध अनन्ततेजपुञ्ज तादृशरमायुक्तरूपविशेषात्मक गायत्रीभूतवाक् पृथिवीशरीर हृदयभेदेन षड्विधगायत्रीनामक लोकवेदसमीरसमान्तर्गत प्रणमाच्चतुर्यपादोपेद गायत्रीपादचतुष्टय प्रतिपाद्य वैकुण्ठस्थिता अनन्तासनस्थिता श्वेतद्वीपस्थिता सर्वजीवस्थितरूपभेदेन चतुरूपात्मक निरूपचरितसर्ववागर्थप्रतिपादक श्रीदेव्या निर्मारूपाष्टक अभिमन्यमानचक्रशङ्खवराभययुक्त हस्तचतुष्टयोपेद प्रदीपवर्ण सर्वावरणभूषित विश्वादिभगवद्रूपाष्टक प्रतिपादक अकाराद्यष्टाक्षरात्मक श्रीमत्प्रणवाद्यष्टमहामन्त्रप्रतिपाद्य अष्टरूपात्मक मन्त्राध्यायोक्त

जय जय श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्यवर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टि कला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्धंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगव समलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्यवर्य सकल यति कुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टि कला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्हंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगवसमलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्य वर्य सकल यति कुल तिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टि कला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्धंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगवसमलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्य वर्य सकल यति कुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्यवर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टिकलापारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्रकिरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्धंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगवसमलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्यवर्य सकल यतिकुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्यवर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टिकलापारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्हंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगवसमलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्यवर्य सकल यतिकुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।